0: 89.1 FM, NTN Radio, the pulse of Guyana.
1: Hey, Rosie! Rosie! पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया
2: क्या?
1: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
1: जब मुझे हुआ था तो
2: तुम?
1: मुझे नींद नहीं आती थी।
2: मुझे भी नहीं आती।
1: मुझे भूख नहीं लगती थी।
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
1: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
1: बस, यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
1: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है।
2: वो क्या?
1: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है, अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा।
2: मारिया!
1: रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो यो?
1: देखो ना, क्या हो गया है अपनी रोजी को?
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
1: नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है, और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा।
1: नहीं!
3: देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
2: By God, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: तो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है। दिल में दर्द रहता है।
5: अच्छा?
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे!